0: SR Digital, entertaining the nation. Manaslu World College, a home for future leaders. Tower Hill, Kathmandu.
1: ए पांच रुपया पांच रुपया पांच रुपया पांच रुपया पांच रुपया पांच रुपया
2: आओ ऐसे तो बच्चा हराए कुछ मने तेरे सात वर्ष का बालक यहाँ रहे कुछ कृपया सब
3: यही फागुन 14 गते महाशिवरात्रि को दिन तपाईहरु को नजिकको सिनेमा घरमा नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणम